न्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे श्वस विप्रवासे स लक्ष्मणो व्यात् भरत